0: अलिसा,
1: तिमीलाई थाहा छ नि है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
0: यो कुरा चाहिँ गप्पै राख है।